मन माने अम पापी निर्गुण को गुण कहिय करिय प्रभु हे दया नानक जन तरिय सोलाष्टपदिया गौड़ी गो सोलाष्टपदिया गुआरी अरेरी गौड़ी किया ये गौड़ी मेरा गुण मल्ला पहला क्यों अंकार सत गुर प्रसाद जो गाई को गोयल राख कर सारा एनस पाले राख लियो आत्म सुख तारा ए तो तेरा को दीन दयाला तुम शरणागत मदन हला राव यह देखो तै रब रहे रख रखन हरा तू दयाता भुगता तू है तू प्राणिया दारा किरत पया आदि उर्दी बिन ज्ञान विचारा बिन जो उपमा जगदीश की बिन सैना अंधियारा जग बिन सत हम देखिया लोभ अहंकार गुरसेवा प्रपाया सच मुक्त द्वारा निजकर मैल अपार को अपरंपर सोई बिन शब्द तेर को नहीं बुझा सुख भोई क्या ले आया कह ले क्या जाए क्या फसे जम जाला डोल बदा व कस जेबरी आकाश पताला गुरमत नाम न विसर सहजे पत पाई है अंतर शब्द निरंधन है मिल आपकवाई है नदर करे परवे अपने गुण अंक समावे नानक मेल न चुके ला सच पावे गौड़ी महला पहला गुर शब्दी गुर प्रसादी पूजा ले सो ले तो होए निवेरा कर कर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा बिन सर शब्द न बुझ जुटी है देखो वे चारा जे लख कर्म कमावे बिन गुर अंधियारा राहो कली बारे क्या तीन स्यों कहिया बिन गुरबंत न सुजई कित बिद निर्वही है खोटे को खरा कहे खरे सार न जाने अंधे का नाव पार खूकली काल वडाने सूते को जागत कहे जागत को सूता जीवत को मुआ कहे मुए नहीं रोता आबद को जाता कहे जाते को आया पर की को अपनी कहे अपनों नहीं पाया मीठे को कड़ुआ कहे कड़ुए को मीठा रहते की निंदा करे ऐसा कल में डीठा चेरी की सेवा करे ठाकर नहीं दिसै ओखर निर्बरोली है माखन नहीं रिसै इस पद जो अर्थाए ले सो गुरु हमारा नानक जी ने आपको सो अपरे अपारा।

आओ सब सुरती मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई ज्ञानी त्यानी गुर गुरहाई कह न जाई तेरी तिल वड्याई सब सत सब तप सब चंगियाईया सिद्धा पुरखा किया वड्याईया तुद बिन सिद्धि किने ना पाईया।

प्राण सखाई हर कीरत हमरी रह रास रहाओ। हर जन केवड भाग वडेरे जन हर हर सरदा हर प्यास हर हर नाम मिले त्रिपथास मिल

बारी सर्ब ठौर मोह सहाई दुष्ट दोख तेले हो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता किल बिक सकल देह को हरता दुष्ट दोखण का शय करता श्री अह तुज जम पै दय अल्लाह पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बाहित फल पावे सोई दुख न तिसै बे आपत कोई अडिल

अपना जान करो प्रतपारा, तुम साहे में किंकर थारा, दास जान दहाथी उबारो, हमरे सब बैरियां संगारो, प्रथम

तुमरी गत मित तुम्ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी बोलना जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय रंगद गुर ते अमरदास रामदासी हुए सहाय अर्जन हर गोबिंद नाम सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस जिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नौ नि दयावे तहाय साब थाई हुए सहाय साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई हुए सहाय दसा पातशाहिया दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलना जी पंजा प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जरा नाम जपिया वन के छकिया देव चलाई तेग वाह देख के अमृत कीता दिना प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी जिन्ना सिंह सिंघनिया ने धर्म हे सीह दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लुहाइयां तिरखड़ियां ते चढ़े तनारियां नाल चिरवाए गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी सिदक के सां सुहासां संग निभाया तिना समूह शहीदां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी पंजा तख्तां सरबत गुरुद्वारियां जी का ध्यान तरके बोलना जी प्रिथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु नाम चेतावन चेतावन का सदका सर्व सुख होए जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छया रियायत देग तेग फतेह ब्रिद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलना जी।

गुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद गौड़ी सुखमनी महला पंजवा सलोक आदि गुराए नमः, जुगाद गुराए नमः, सतगुराए नमः, श्री गुरुदेव नमः। अष्टपदी सिमर सिमर सिमर सुख पामो, कल कलेश तन माहे मिटामो, सिमराऊं जास विश्वंबर एकै, नाम जपत आगनत अरिकै, वेद पुराण सिमरित सुधा खियर, किन्ने राम नामिक आखियर, किनका एक जिस जी बसावै, ताकि महिमा गनि न आवै। कंकी एक दर्श तुहारो, नानक उन संग मोहे उधारो, सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना के मन विश्राम रहाओ। प्रभ कै सिमरन गर्भ ना बसा, प्रभ कै सिमरन दुख जम नसा, प्रभ कै सिमरन काल पर हर, प्रभ कै सिमरन दुश्मन टर, प्रभ सिमरत कश बिघन न लागे, प्रभ गै सिमरन अंधन जागे, प्रभ गै सिमरन भाव न व्यापै,

अष्टपदे जय मात पिता सुत मीत न पाए मन ऊहा नाम तेरा संग सहाय जय महाप्यान दूत जम दलाय तह केवल नाम संग तेरा चलाय जय मुश्किल होवे अत पारी पर को नाम खिन माहे उदारी अनक पुनः चरण करत नहीं तराय पर को नाम कोट पाप पर हराय गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पाव सुख नेरे सगल शिष्ट को राजा दुखिया हरगा नाम जपत हुए सुखिया लाख करोरी बंदना पर हरगा नाम जपत निस्तराय अनक माया रंग तिखना बुझावे हरका नाम जपत आगावे जे मार्ग ए जात अकेला तै हर नाम संग होत सुहेला ऐसा नामन सदा त्याई नानक गुरमुख परम गत पाई छूटत नहीं कोट लखबाही नाम जपत तै पार पराही अनक बिघन जाय संगार हरका नाम तत्काल उदार अनक जोन जन मैं मर जाम नाम जपत पावै विश्राम आओ मैला मल कबू न धोवै हरगा नाम कोट पाप खोवै ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाइय साधगे संग जे मार के गने जाहे ना कोसा हरका नाम ऊहा संग तोसा जे पैडे महा अंध गुबारा हरगा नाम संग उजियारा जहां पंथ तेरा कोना सिंजानू

अनुग जतन कर त्रिशन्ना त्रप है पेख अनेक अग्न नहीं बुझ जाए कोट पाव दर्ग नहीं सिज जाए शूट सुनाही ऊप पयाल मोह व्यापे माया जाल अवर करतूत सगरी जमंडान है गोविंद भजन मिंत लही मान है हर का नाम जब दुख जाए नानक बोले सह सुभाए चार पदार्थ जेको मांगा है सात जना की सेवा लागा है जेको आपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सदगावे है।

अष्टपदे दस वस्तुले पाछे पावै एक वस्तकान भी खोट गवावै एक भी ना दे दस भी हरले तो मूढ़ा कहो कहा करे जिस ठाकर से

अष्टपदी जय प्रसाद शक्ति अमृत खाहे तिस ठाकुर को रखमन माहे जय प्रसाद सुगंध तल नावे तिसको सिमरत परमगत भावे जय प्रसाद वसे सुख मंदर तसे ध्याए सदा मनंदर जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पैर सिमरो सरसना जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा ध्याय ध्यान जोग जय प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे तिसे त्याग तबर लुभावे जय प्रसाद सुख से जय सो जय मन आठ पहर थका जस गा बीजा जय प्रसाद तू सब कहू मान मुख ताको जस रसन बखाना जय प्रसाद तेरु रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जबत दरगे मान पावे नानक पत से ती कर जावे जय प्रसाद आरोग कंचन देही लिबरावत सराम स्नेही जय प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके मन सरणी पर ठाकुर प्रभुता खाय जय प्रसाद तुझको ना बहु छाय मन सा सा सिमरो प्रभु उचे जय प्रसाद भाई दुर्लभ दे नानक ताकी भगत करे हे जय प्रसाद आ भुखन पहरी जाय मन ते सिमरत को आलस की जाय जय प्रसाद अशुभ हास्त सुबारी मन ते प्रभु को कबहु ना बिसारी जय प्रसाद भाग मिलख तना राख प्रोए प्रभु अपने मना जिन तेरी मन बनत बनाई उठ बैठ सा तिसे त्याई तिसे त्याए जो एक अलख है इहा उहा नानक तेरी रखा है जय प्रसाद करे पुन बहुदान मन आठ पहर कर तिसका त्याहन जय प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभु को साथ साथ चितारी जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभु सिमरो सदा अनूप जय प्रसाद तेरी नेकी जात स्वप्रभ सिमर सदा दिन रात जय प्रसाद तेरी पत रहा गुर प्रसाद नानक जस कह जय प्रसाद सुने कर्ण नाद जय प्रसाद वेखे बिस्माद जय प्रसाद बोले अमृत रसना जय प्रसाद सुख सहजे बसना जय प्रसाद हस्त कर चले जय प्रसाद संपूर्ण भले जय प्रसाद परमगत पावे जय प्रसाद सुख सह समावे ऐसा प्रभ त्याग बरगत लागो गुरु प्रसाद नानक मन जागो जय प्रसाद तू प्रगट।

बरसी ब्रह्मज्ञानी के दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्मज्ञानी बंधन दे मुक्ता ब्रह्मज्ञानी के निर्मल जुगता ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्मज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्मज्ञानी एक प्रयास ब्रह्मज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्मज्ञानी का गरीबी समाहा ब्रह्मज्ञानी परोपकारो महा ब्रह्मज्ञानी का नाही तंदा ब्रह्मज्ञानी तापत बंदा ब्रह्मज्ञानी का स्वफला ब्रह्मज्ञानी सफल फला ब्रह्मज्ञानी संग सगल उदार नानक ब्रह्मज्ञानी जप सगल संसार ब्रह्मज्ञानी।

ब्रह्म के रंग जैसी मद तैसा प्रकाश पार ब्रह्म करता विनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक भय निहाल सलोक उस्तत करहे अनेक जन अंत न पारावार नानक रचना प्रभरची बहुविध अनक प्रकार अष्टपदी कई कोट हुए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई गोट भय तीर्थवासी कई गोट बन भ्रमे उदासी कई गोट वेद गए स्रोते कई गोट तभीसर होते कई गोट आत्म ध्यान धारे कई गोट गबका विचारे कई गोट नवतन नाम ध्यावे नानक करते गंत न पावे कई गोट भय अभिमानी कई गोट अंध ज्ञानी कई गोट कृपन कठोर कई गोट अभिग आत्म ने कोर कई कोट पर दर्प को हिरे कई कोट पर दुख ना करहे कई कोट माया सर माहे कई कोट परदेश पर माहे जित जित लाभ तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति योगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्प उपाए कई कोट पाथर बृख बजाए कई कोट पवन पाणी बैसंतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट ससियर सूर नक्षत्र कई कोट देव दानव इंद्र शेर शत्र सगल समग्री अपने सूतार है नानक जिज भाव है तिस तिस निस्तार कई कोट राजस तामस सातक कई कोट वेद पुराण सिमर तर शास्त कई कोट किए रतन समंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चिर जीवे कई कोट गिरी बेर स्वर्ण थीवे कई कोट जन जखे किनर पिसाच कई गुड़ भूत प्रे सुकर मृगाच सबते डेरा सब हुते दूर नानक आप अलप तरिया प्रभुर कई गुड़ पाताल के वासी कई गुड़ नरक सुर्ग निवासी कई गुड़ जन्मे जीवे मर है कई गुड़ बहु जूनी फिर है कई गुड़ बैठत ही खाहे कई गुड़ काले थक पाहे कई गुड़ गिये तरमंत कई गुड़ माया मैं चिंत जय जय भाणा तैते राखे नान सब कुछ प्रभु के हाथ है कई कोट भय बैरागी राम नाम संगतन लिवलागी कई कोट प्रभु को खोजंते आत्म में पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रप्यास तिनको मिलो प्रभ अविनाश कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको आप सुप्रसन्न नानक तेजन सदा धन धन कई कोट खाणी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड

नासा संगा उठ संगा दुखी उठ जा रहे नरासा संगा दुख ना त्रष्टा कोय जैसा भाव है तैसा कोई होय पया कीर्तना बेटा कोय नानक जान सच्चा सोए सब गढ़ तिसके वो करने हार सदा सदा तिस

राज रंग माया विस्तार ते कहाओ गमन छुटकार असस्ती रथ सवारी झूठा डम झूठ बाजारी जिंदी तस बजेना बेगाना नाम विसार नानक पछताना गुरकी मातूले याने भगत बना बो डूबे सियाने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के किल बग जाहे आप जपो अवरा नाम जपावो संत कह द्रात गत पावो सार बुझ सदर को

मांगे नाम ब्रह्मसार प्रभु की दृष्ट मासुख होय अर्थ पावे बिरला गोय जन जाख्या से जंत्र बताने पूर्ण मूर्ख नहीं डोलाने सो भर भरे प्रेम रस रंग बजे जाओ साध गया संग परे शरण आन सब त्याग अंदर प्रकाश अंदर निबलाग बड़े भागी जपया ब्रह्म सोए नानक नाम रते सुख होए सेवक की मनसा पूरी भई सतगुरु ते निर्मल बात लई जन को प्रभु होयो दयाल सेवक इनो सदा निहाल बंधन गाढ़ मुख जन भया जन्म मरण दुख भ्रम गया शून्य सरदा सब पूरी रब रहा सत्संग हजूरी जिसका साथ न लिया मिला हे नानक भक्ति नाम समाये सोगो बिसरै जे घाल न भान है सोगो बिसरै जे किया जाने सोगो बिसरै जिन सब कुछ दिया सोगो बिसरै जे जीवन जिया सोगो बिसरै जे अगर में राख गुरु प्रसाद को बृढ़ा लख है सोगो बिसरै जे बिगते काटे जन्म जन्म का टूटा गांडे गुरपुरे तथेहा बुझाया प्रभना नानक जन ध्याया साजन संत गुरु गामान त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अभ्रह नाम जपाओ भक्त पाए तरगे संसार भिन भक्ति तनो शीशार सर्व कल्याण सुख निंद नाम बुढ़ जात भाए विश्राम सगल दुखा अवतनाश नानक नाम जपो गुंदास उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मंत्र अंतर एही स्वाओ नेत्रो पेख दर्शक होए मान बिकसै साध चरण तोय भगजना के मंत्र रंग बिरला गौ बावे संग एक बस दीजे कर मया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि मां कही ना जाए नानक रहा सर्व समाय पर बख्शंद दीन दयाल भगत बशल सदा कृपाल

नानुम तुमरी शरण पुरख भगवान सर्वैकुंठ मुक्त मोख पाए एक नम खरके गुण गाय अनगराज भोग बढ़िया हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन का पर संगीत रसना जपती हर हरनीत पलिसो करनी शोभा तन मंदिर तय बसे पूर्ण गुरमंत सा संप्रभ देहो निवास सर्व

जब हो तब प्रभु केवल धनी तब बांध मुगत गाओ किसको गनी तब एक हर अगम अपार तब नर्ग सुर कहो कौन आओ तार जब निर्गुण प्रभु सह सुभाए तब शिव सगत कहो कित ठाए तब शिव सगत कहो कित ठाए जब आप अपनी जो तरह तब गमन डर गमन कत डरा अपना चल ताप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख आपना संत जन मरण कहो कहा विनाशन जब पूर्ण करता प्रभु सोए तब जमकी त्रास कह हो कि सोए जब अवगत अगोचर प्रभु एका तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगाते तब गौन छुटे कौन बंधन बाधे अपने आप आपी अचर्जा नानक आपन रूप आपी उपरजा जय निर्मल पुरख पुरख पा धोता तय बिन मैल कहो क्या धोता तय बिन मैल कहो क्या धोता जय निरंजन निरंकार निर्भान तय गौन गौमान गौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय छल छिद्र लगत गौ कीस जय जो स्वरूपी जो संग समावित किसे भूकम द्रवता वह करण करावन करने हार नान करते का नाहे सुमार जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब गमन माए बाप मित्र सुध पाई जय सर्व कला पे प्रवीणता वेद कतेब कह कव चीन जब अपने आप उतार है तो सगन अब सगन कहा विचारे जय अपन जापन आप नेरा तय कौन ठाकुर कौन गई है चेरा बिस्मन बिस्मरा बिस्माद नानक अपनी गत जानू आप जय शल अशेद अभे समाया ऊहा किसे ब्याप दमाया आपस को आप आदेश तेह गुण का नाही प्रवेश जय कह एक एक भगवंता दय गौन अचिंत के सलाह के चिंता

मैं मोह भरम बै बहार दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार कियो बख्यान अपन खेल आप कर देखे खेल संकोच तो नानक एक जगत भगत आप जय पसरे पासार संत प्रताप धूम पाका आपे धनी उनकी शोभा उन्हों बनी आपे कौत करे आनंद जो जापे।

अष्टपदी आप कथे आप सुनने हारा पेका विस्तार जात से पावेता सृष्टि उपाय अपने भाणे लय समाए तुम दे भिन्न नहीं किशोया अपन सू सब जगत परोए जाको प्रभ जीव आप जाए सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत का बेता नानक सगल सृष्ट का जेता जी जंत्र सब ताके हाथ दीन दयाल अनाथ को नाथ जिस राखे तस कोई ना मारे सो मुआ जमनो बिसारा तिस्तज अवर का गो जाए सबसे एक निरंजन राय।

गुनगाव अष्टपदे पूरे गुरुका सोनपदे स पार ब्रह्म निकट कर बेह सा सा सिमरो गोविंद मनंत्र की उदरा चिंद आस अनित्यागो तरंग संदना की तूर मन मंग आप छोड़ बेंती करहो सा संग अगन सागर तरहो

गोविंद भगत गए मन विसराम। कोट बराद सासंग मिटाए, संत कृपा ते जम ते छुटाए, जाके मस्तक करम रब आए, साध सर नानक दे आए।

गावे को दात जाने निसार, गावे को गुण वडियाई आचार, गावे को विद्या विखम विचार।

चंगा नाव रखाए कै जस कीरत जगले जे तस नजर नावई ता वात न पुछे के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतया गुण दे तेहा कोय न सुजई जे तिस गुण कोय करे सुनया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनया धरत धबले आकाश

सुमार ताओल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखया जन सूत जे को बुझै होवे सच्यार तबले ऊपर के ता पहाड़

अस्तरम में नमस्तं जलासरे नमस्तं निरासरे नमस्तं जाते नमस्तं पाते नमस्तं मजबे नमस्तस्त अजबे

सुरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राजुर्जेश्वरं परम विद्धे नमो सहत्रपाने नमो वत्रमाने नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेक्षीय परमीय भोगीय भुगते नमो जोग जोगेश्वरं

चतुर चक्र जाने चतुर चक्र वर्ती चतुर चक्र परती चतुर चक्र पाले चतुर चक्र काले चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे चतुर चक्र मान्य है चतुर चक्र धान्य है चाचरी छंद न सतर न मित्र न परमंग न पितर न कर्मंग न काय अजन्मंग अजाय न चित्तर न मित्र परे है पवित्र है।

केसरपत्र भेसै केसरपत्र महान्याय सदैवं प्रधान्याय केसरपत्र जाप्याय केसरपत्र स्थाप्याय केसरपत्र पाहन्याय केसर

वृत्त है, के मित्तो पसा है, के आतुम प्रभा है, के चलंग नाग है, के मित्तो पांग है, मत परिशांत व प्रसाद

जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पात साहि दसवीं तवै प्रसाद सवैये शराबग शुद्ध समूह सिधान के देख प्रयोग कर जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सुधाधक संत समूह अनेक मति के सारे देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूँ ते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर सांगे अनुपे उतंग सुरंग सुवारे कोड़ तुरंग कुरंग से कुद पौन के गौन को जात ने बारे भारी भजान के पुह पली बिदन आप सीस न जात बिचारे ते पहे तो कहां पहे पुह तंत गो नांग ही पाए पधारे जीत फिरे सब देह दिसान को बाजत ढोल में दंग नंगारे गुंजत गुड़ गंजान के सुंदर ही सत ही है राज हजारे भूत भविख भवान के भूत कौन गाने नहीं जात बिचारे श्री पात श्री भगवान भजे बिनंत को अंत के ताम सिधारे।

स्वयं पव अवरच मेरी तुम करो सिख उबार सिख संग्रह दुह जिते उठवती उदपाता सकल मिले करो रन कहता जे अह

बचाई। कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुभराता किल बिख सकल देह को हरता दुष्ट दुख्यान का वशाय करता श्री अह तुह जय पह दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मान बाहित फल पावे सोई दुख न तिसे बेआवत कोई अड़िल सुने गुंग।

परमेसर मन ताकी ओट गहिजा रे जिन तारे ब्रह्मंड खंड हर ताको नाम जपीजा रे मन की मात त्यागो हर जन हुकम बोझ सुख पाईया रे जो प्रभ करै सोई पहल मन सुख दुख ओही त्याईया रे ओट पतत उधारै खिन मैं

उचरत गुण गोपाल जस दूर ते जम भगै। गरीब रिवाज जी कृपा करदे ने भी मन करके तन करके उस प्रभु परमात्मा दे नाम नूं जपिए आराधिए उहदी आराधना करिए। जिस वेले तुसी शाम नूं सोधर जी दा जाप जपदे हो तां सतगुरां दे अमृत बचन तुहानूं प्राप्त हुंदे ने। अंतर गुर आराधना अपने अंदर ही गुरु की वडियाई करते ही रहिंदा प्यारा गुरसिख खट्ठे पैर गुरु की उस्तत विच हुंदा रहे। अंतर गुर आराधना जिहवा जप गुर नाउ ते जबान नाल भी गुरु जी दे जाप नूं जपदा है। रसना गुण गोपाल नित गायन

संजोग जैस सिमरत सुख पाई बिनसै वियोग नानक प्रभु शरणागति करण कारण जोग। इस करके प्रभु शरणागति करण कारण जोग। इस करके गरीब निवाजी कृपा कर दे मन तन प्रभ आराधी है मिल साध समाग। भी साध संगत विच

ठाकुर तुम प्यारदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारक तेरे।

तहर जगदी बोले सो निहाल सत श्री अकाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: अहनस सहज सुपाए दर्शन परस्याय गुरु कै जन्म मरण दुख जाए।
1: बैठो, नमो लेंदे।

सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहद साहो जिस पास बैठिया सोही सबना दिसो सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहद साहो जिस पास बैठिया सोही सबना दिसो

एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग माला राग एक संग पंच बरंगन संग अलापे अठो नंदन प्रथम राग भैरो वे करही पंच रागनी संग उचरही प्रथम

मद माधव गावे ललत बलावल गावे ही अपनी अपनी भांत अष्ट पुत्र भैरव के गावे गायन पात्र द्वितीया माल कौसा के आलापे संग रागनी पांचो थापे गुण करी अर देव गंधारी गंधारी सिहुति उचारी तनासरी ए पांचो गाई माल राग कौ सक संग लाई मारू मस्त अंग में वारा प्रबल चंड को सक्यो वारा कौ खटियो भौरा आनंद गाये अष्ट माल कौ सक संग लाय पुन आयो हिंडो लहु पंच नार संग अष्ट सोता उठे तान कलोल गायन तार मिला वही तेलंगी देव करी आई बसंती संदूर सुहाई सरसिहरी लै भार जा संगलाई पांचो हर जा सुरमानंद भास कर आई चंद्र बिमगलन सुहाई सरस बाण वाहे बनोदा गावे सरस बसंत कमोदा इट पुत्र मैं कहे सुवारी पुन आई दीपक की बारी

गौराव कानरा कल्याणा अष्ट पुत्र दीपक के जाना समल श्री राघव गावे पांचो संग बरंगन लावे बैरारी करनाटी धरी गवरी गावे आसा वरी तय पाछे सिंधवी आलापी श्री राग स्यों पांचो थापी सालू सारग सागरा और गौंड गंभीरा अष्ट पुत्र श्री राग के गोंडा कुंभ अमीरा कष्टम एक राग वै गावे पांचो संग बरंगन लावे सोरठ गुण मलारी तुनी पुन गावे आसा गुण गुणी

ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन पावे मुख दुवार मन परवार साधार मन तरे तारे गुर सिख मन नानक पवे ना भेख ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावे दरगे मान पंच सोहे दर राजान पंचा का गुरी ध्यान जे को कहे करे विचार करते कह करने नाही सोमवार तौल त्रम दया का पूत संतोख थाप रख्या जन सूत जे को बुझे वै सुचियार तबले उपर केता पार धरती और परे होर होर तिस्ते पार तले कमन जोर जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया बुढ़ी कला मेहो लिखा लिख जाने कोहे लिखा लिखिया केता होए केता दान सुवाल्यो रूप केती दार जाने कौन कूत कीता पसाओ एको कवाओ तिस्ते होए लख दरिया कुदरत कवन का विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई भरी कार तू सदा सलामत निरंकार असंख जाप असंख भाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूरमोह भख सार असंख मुण लवलाए तार कुदरत कवन का विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख अल वड़ त्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े यार कूड़े फेराहे असंख मलेच्छ मल भख खाहे असंख निंदक सिर करे भार नानक नीच कहे विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद भावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव गम गम असंख लो संख सिर भार अखरी नाम अखरी सला अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखण बोलन बाण अखरा सिर संजोग वखाण जिने लिखे ते सरनाए जे फरमाए तिव ते पाहे जेता कीता तेता नाओ बिरनावे नाही को थाओ कुदरत कवन का विचार वारिया न जावा एक वार जो तुद पावे साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार परिय हथ पैर तन देहे पानी धोते तो उतर सिखे मुद बलीती कपड़ होए दे साबून लिये हो धोए तो भरिय मत पापा कै संग तो पै नावे कै रंग पुन्नी पापी आखण नाहे कर कर करना लिख ले जाओ आपे बीज आपे ही खाहो नानक हुकमी आवो जाहो तीर तप दया दत दान जे को पावे तिलका मान सुनिया मनिया मन कीता भाओ अंतरगत तीर्थ मल नहाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए बिन गुण कीते भगत ना होए स्वस्थ हाथ बाणी बरमाओ सत सुहान सदा मन चाओ कवन सुवेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन सुरति माहु कवन जित हो आया कार वेल ना पाया पंडती जे होवे लेख पुराण वक्त ना पायो का दियां जे लिखण लेख कुरान तिथ वार न जोगी जाने रुत माहो न कोई जा करता सिरठी को साजे आपे जाने सोई केव कर आखा केव सलाही क्यों वरणी केव जाना नानके आखण सब को आखे एक दू एक सियाणा वड्डा साहेब वड्डी नाई कीता जा काहू वे नानक जे को आपु जाने अगे गया न सो है पाताला पताल लख आगासा आगास ओढ़ कोड़ कपाल थके वेद कैनक वात सहस उठारे कहनक ते बांसलू एक धात लिखा होए ता लिखिए लिखे होए वनास नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप सलाही सलाहती सुरत न पाईआ नदियां ते वाह पवै समुंद न जानिए समुंद सा सुल्तान ग्रह सेती माल धन कीड़ी तुल ना होवनी जे तिस मनो ना विसरै अंत ना सिवती कहना अंत अंत न करड़े देना अंत अंत न वेखण सुन ना अंत अंत न जापे क्या मन मन अंत न जापे कीता कार अंत न जापे पारा वार अंत कारण केते बल लाए ताके अंत न पाए जाए एहो अंत ना जाने कोए बहुता कहिए बहुता होए वड्डा सहबी उचा था ऊची उपरी उचा ना होए बड़ी उचा होवे कोए ते सूचे को जाने सोए जिवड़े आप जाने आप आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल ना तुमाए किते मंगे जो दे पार किते अगणत नहीं विचार किते खब टुटे वेकार
ਕਿਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ ਕਿਤੇ ਮੂਰਖਾਹੀ ਖਾਹੇ ਕਿਤਿਆਂ ਦੁਖ ਬੂ ਸਦ ਮਾਰੇ ਪੇਦਾ ਤਰੀ ਦਾ ਤਾਰ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੇ ਹੋਇਓ ਰੱਖ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਇ ਜੇ ਕੋ ਖਾਏ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਇਓ ਜਾਣੇ ਜੇਤੀਆਂ ਮੁਖਾਏ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪੇ ਦੇ ਆਖੇ ਸਿਬੇ ਕਈ ਕੇ ਜਿਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤ ਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤ ਸਾਹ ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰ ਮੁੱਲ ਵਪਾਰੀ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ ਅਮੁੱਲ ਆਵਹਿ ਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਹੇ ਅਮੁੱਲ ਭਾਏ ਮੁੱਲਾਂ ਸੁਮਾਹੇ ਮੁੱਲ ਧਰਮ ਮੁੱਲ ਦੀਵਾਨ ਮੁੱਲ ਤੁਲ ਮੁੱਲ ਪਰਵਾਨ ਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ ਅਮੁੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੁੱਲ ਕਰ ਮੁੱਲ ਫੁਰਮਾਨ ਮੁੱਲ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਆਖ ਆਖ ਰਹਿ ਲਵਲਾਏ ਆਖੇ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਆਖੇ ਪੜੇ ਕਰੇ ਵਖਿਆਣ ਆਖੇ ਬਰਮੈ ਆਖੇ ਇੰਦੇ ਆਖੇ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗਉ ਵੇਂਦੇ ਆਖੇ ਈਸ਼ਰ ਆਖੇ ਸਿੱਧ ਆਖੇ ਕੀਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ ਆਖੇ ਦਾਨਵੇ ਆਖੇ ਦੇਵ ਆਖੇ ਸੁਰ ਨਰ ਮਨ ਜਨ ਸੇਵਕ

जित बह सर्व संभाले। वाजे नादि अनेक असंखा केते बावन हारे, केते राग परि सों कहियन केते गावन हारे। गावे तोहन पौन पाणी बसंतर गावे, राजा धर्म दुआरे गावे। चित गुप्त लिख जाने लिख लिख धर्म विचारे गावे। ईश्वर ब्रह्मा देवी सौन सदा सुवारे गावे। इंदे उदासन बैठे देवत्या दरनाले गावे। सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन, जति सदी संतोखी गावे वीर कुरारे गावन। पंडित पढ़न रखीसर जुग जुग वेदा नाले गावे। मोहनी आवन मोहन सुरगा मच पियाले गावन, रत्न उपाए तेरे अड़सठ तीर्थ नाले गावे। जोधमा अबल सूरा गावे खाणी चारे गाव है। खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे से, तुदनो गाव है जो तुद भावन रते तेरे भगत रसाले। और केते गावन से मैं चेतन आवन नान क्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है। पियो सी जाए न जासी रचना जिन रचाई, रंगी रंगी भाती कर कर जिन सी माया जिन उपाय। कर कर वेखे कीता अपना जिव तिस दी वड्याई, जो तिस भावे सोई करसी हुक्म ना करना जाई। सो पात साहो साह पात साहेब नानक रह नरजाई। मुंदा संतोख सरम पद चोली त्यान की करे बेभूत खिंथा। काल कुवारी काया जुगत डंडा प्रतीत आई, पंथी सगल जमाती मन जीते जग जीत। आदेश तिसे आदेश आद अनिल नाद नाथ, जुग जुग एको वेश भुगत ज्ञान दया भंडारण। घट घट वाजे नाद आप नाथ, नाथी सब जां की रिद सिद्ध अवरा साध। संजोग वंजोग दे कार चलावे लिखे आवे भाग, आदे तिसे आदेश आद अनिल नाद नाथ, जुग जुग एको वेश एका माई। जुगत आई तन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान। जिव तिस भावे तिवे चुलावे, जिव हुवे फरमान। वेखे उन्ना नजर न आवे बहुताए हो वडाण। आदे तिसे आदे साध अनिल नाद नाथ, जुग जुग एको वेश। आसन लोय लोय भंडार, जो किछ पाया सो एका वार। कर कर वेखे सृजनहार, नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसे आदेश आद अनिल नाद नाथ, जुग जुग एको वेश। एक दूजी पौ लख हुए लख हुए लख वी, सो लख लख गेड़ा की। एक नाम जगदीश एतराए पद पवड़िया, चढ़िए हुए अकीसा। सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीसा, नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़ा ठीसा।

मुख उजले केती छुट्टी नाल राम कली माला तीजा आनंद एको अंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वधाइया राग रतन परिवार परियां शब्द गावण।

सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सुवारना सबना गला सुमरा स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो अरनाले साचे साहिबा क्या नाही कर तेरा कर ता तेरा सब किछ है जिस दे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सचे साहिब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम उधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर सांत सुख मन ए वसिया जिन इच्छा सब बुझाईया सदा कुर्बान कीता गुरु विटो जह दिया वडियाईया कहे नानक सुनो संतो सब धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित कर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिन को से नाम हर कह लागे कहे नानक तय सुख हुआ तित कर अनहद वाजे साची लवे बिन देह नमानी लवे बाजो क्या करे विचारिया तुद बाज समरथ कोय नाही कृपा कर बनवारिया सुनोर था नाई शब्द लाग सुवारिया कह नानक लवे बाजो क्या करे विचारिया आनंद आनंद सब को कह आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा किलवे कटे ज्ञान अंजन सारे अंदरों जिनका मोह टुटा तिनका सब सचे सवारिया कहे नानक एहो आनंद है आनंद गुरु आनंद गुर ते जानिया बाबा जे तू दे सोई जन पावे पावे ता सो जन दे जिसनु होर क्या करे विचारिया एक भरम भूले फिरे दह दे सिक नाम लाग सवारिया गुर प्रसादी मन भया निर्मल जिन्ना पाणा पावे कहे नानक जिस देह प्यारे सोई जन पावे आओ संत प्यारे अकथ की करें कहानी अकथ केरी कित दुआरे पाई आए तन मन धन सब सौंप गुर को हुकम मन पाई आए हुकम मनो गुरु के रागा वो सच्ची बाणी कहे नानक सुनो संतो कथ्यो अकथ कहानी मन चंचला चतुराई किने ना पाया चतुराई ना पाया किने तू सुन मन मेरे आए माया मोनी जिनेत परम भुलाया माया ता मोनी तिने कीती जिंठ कौली पाईया कुर्बान कीता तिसे विटों जन मोह मीठा लाया कहे नानक मन चंचल चतुराई किने ना पाया ए मन प्यारिया तू सदा सच समाले एहो कटंब तू जे देखदा चले नाही तेरे नाले सा तेरे चले नाही तिस नाल क्यों चित लाइए ऐसा कम मूले ना कीचै जित अंत पछो ताइए सतगुरु का उपदेश सुन तू वे तेरे नाले कहे नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले अगम गोचरा तेरा अंत न पाया अंतु न पाया किने तेरा अपना तू जाने जी जन सब खेल तेरा क्या को आख वखाने आखे ता वेख सब तू है जिन जगत उपाया कहे नानक तू सदा गम है तेरा अंत न पाया सुर नर मुन जन अमृत खोज दे सु अमृत गुर ते पाया पाया अमृत गुर कृपा कीनी सचा मन वसाया जी जन सब तो दे उपाय एक वेक परसन आया लभ लो बंकार चूका सतगुरु भला पाया कह नानक जिसनु आप तुठा तने अमृत गुर ते पाया भगतां की चाल निराली चाला निराली भगतां केरी बिख मार्ग चलना लभ लो बंकार तज त्रिसना बहुत नाही बोलना खन्यो तिखी वालो निकिए तु मार्ग जाना गुर प्रसादी जिनी आवत जियार वासना सुमाणी कह नानक चाल भगता जुग जुग निराली ज्यो तू चलाए तिव चलै स्वामी होर क्या जाना गुण तेरे जिब तू चलाए तिव चलै जिन्ना मार्ग पावे कर कृपा जन नाम लाए से हर हर सदा ते आवे जिसनु कथा सुनाए अपनी से गुरुद्वारे सुख पावे कहे नानक सचे साहेब ज्यों पावे तिवै चुलावे यो सोहला शब्द सुहावा शब्दो सुहावा सदा सोहला सतगुरु सुनाया यो दिन के मन वसिया जन धुरों लिखे आया एक फिर एक नेरे करे गल्ला गली किने ना पाया कहे नानक शब्द सोहला सतगुरु सुनाया पवित होए से जन्ना जिनी हर त्याया हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया पवित माता पिता कटम सहत स्यो पवित संगत सुभाइया कहन दे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया कहे नानक से पवित जिनी गुरमुख हर त्याया करमी सहज ना उपजे बिन सहजे सहसा ना जाए
नह जाय सहसा किते संयम रहे कर्म कमाए सहसे जियो मलीन है कित संयम धोता जाए मन धोवो शब्द लाग हर स्यो रहो चित लाए कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजे हो सहसा विजाय जियो मैले बारो निर्मल बारो निर्मल जियो ता मैले तिनी जन्म जुए हारिया ए तिसना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया वेदा में नाम उत्तम सो सुने नाही फिरे ज्यो बेतालिया कहे नानक जिन साज तजिया कूड़े लागे तिनी जन्म जुए हारिया जियो निर्मल बारो निर्मल बारो ता निर्मल जियो निर्मल सतगुर ते करणी कमाणी कूड़ की सोए पहुंचे नाई मन सासा समाणी जन्म रतन जिनी खटिया भले सेवन जारे कहे नानक जिन मर निर्मल सदा रहे गुर नाले जे को सिख गुरु सेती सनमुख वै उवे ता सनमुख सिख कोई जियो रहे गुर नाले गुर के चरण हृदय ते आए अंतरात्म समाले आव छड़ सदा रहे परणे गुरबिन अवरणा जाने कोय कहे नानक सुनो संत हो सो सिख सनमुख होए जे को गुर ते वे मुख होवै बिन सतगुर मुक्त ना पावे पावे मुक्त ना होर थाय कोई पुछो बबेकी आ जाए अनेक जूनी भरमे आवे बिन सतगुरु मुक्त ना पाए फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए कहे नानक विचार देखो बिन सतगुरु मुक्त ना पाए आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी बाणी ता गावो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी जिन कौ नदर कर्म हो वै हृदय तना सुमाणी पीवो अमृत सदा रहो हर रंग जप्यो सारंग पाणी कहे नानक सदा गावो ए सच्ची बाणी सतगुरु बिना और कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी कहंदे कच्चे सुनदे कच्चे कच्ची आख वखाणी हर

कहे नानक सतगुरु बाजो होर कच्ची बाणी। गुर का शब्द रतन हीरे जित जड़ाओ, शब्द रतन जित मन लागा, हो सुभाव सब सेती मन मिलिया सचे लाया, भाऊ आपे हीरा रतन आपे जिसनू दे बुझाए। कहे नानक शब्द रतन हीरा जित जड़ाओ, शिव सगत आपे उपाय, कह करता आपे हुक्म वरताए, हुक्म वरताए आप वेख गुरमुख से बुझाए, तोड़े बंधन होवे मुगत शब्द मन वसाए। गुरमुख जिसनु आप करे सो होवे एक सस्यों लिवलाए, कहे नानक आप करता पे हुकुम बुझाए, सिमर शास्त्र पुन पाप विचार दे, ततै सारणा जानी, ततै सारणा जानी गुरु बाजो, ततै सारणा जानी तेहि गुणी संसार भ्रम सुता सुतिया रैण विहानी, गुर कृपा ते से जन जागे जिनार मन वसिया बोले अमृत बाणी। कहे नानक सो तत पाए जिसनु अण दिनार लिवला के जागत रहन विहानी, माता के उदर में प्रत पाल करे सो क्यों मनो वसारिये, मनो क्यों वसारिये वड़दाता जगन में हार पहुंचावे। उसनो को भोय न सकी जिसनु अपनी लिवलावे, अपनी लिवे आपे लाए, गुरमुख सदा संभालिये। कहे नानक वड़दाता सो क्यों मनो वसारिये, जैसी अग्न उदर मैं तैसी बार माया, माया अग्न सब एको जेही करते खेल रचाया, जांत सपाणा ता जम्मिया परवार भला पाया, लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताए, माया जे तर विसरे मोप जे भाओ दूजा लाया। कहे नान गुर प्रसादी जिन्ना लिव लागी तिनी विचे माया पाया, रहा पिया मुल कह मुल न पाया जाए, मुल न पाया जाए किसे विटो रहे लोक बुललाए, ऐसा सतगुर जे मिले तिसनु सिर संपीए विचों आप जाए। जिस दा जियो तिस मिल रहे हर वसे मन आए, हर आपे अमुलक है भागत ना के नानका, जिन हर पले पाए हर रास मेरी मन वन जारा, रास मेरी मन वन जारा, हर रास मेरी मन वन जारा, सतगुर ते रास जानी, हर हर नित जपियो जियो लाह खटियो, दिहाड़ियो तन तिन्ना मिलिया जिनार आपे भाणा। कहे नानक हर रास मेरी मन हुआ वन जारा, रसना तू अन रस राच रही, तेरी प्यास न जाए, प्यास न जाए और ते किते, जिचरा रस पल्ले ना पाया, रस पाए पल्ले पी, रस बौड़ ना तृष्णा लागे आए, एहो रस करमी पाईए सतगुर मिले जिसे आए। कहे नानक होर अन रासा विसरे, जान वसे मन आए, श्री राम मेरे यार तू मैं जोत रखी ता तू जग में आया, हर जोत रखी तुद विच ता तू जग में आया, हर आपे माता आपे पिता जन जी उपाय, जगत दिखाया गुर प्रसादी बुझिया ता चल तो आ चलत नदरी आया। कहे नानक श्रेष्ठ का मूल रचिया, जोत रखी ता तू जग में आया, मन चाओ भय आबरा व्यागम सुनियार, मंगल गाओ सखी ग्रह मंदिर बनियार, गाओ मंगल नित सखिये सोग दुख ना व्यापे, गुर चरण लागे दिन सुभागे अपना पिर जापे, अनहत बाणी गुर शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो। कहे नानक प्रवे आ मिलिया करण कारण जोगो, ए शरीरा मेरिया इस जग में आए, कह क्या तुद कर्म कमाया, के कर्म कमाया तुद शरीरा, जा तू जग में आया, जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया, गुर प्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया। कहे नानक इहो शरीर प्रवान हुआ जिन सतगुर स्यों चित लाया, नित्रो मेरे हर तुम मैं जो तरी, हर बिनिवरना देखो कोई, हर बिनिवरना देखो कोई, नदरी हर निहालिया, इहो वे संसार तुम देखदे हो, हर का रूप है हर रूप नदरी आया, गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा रे, हर बिनिवरना कोई। कहे नानक नेत्र अंध सहि सतगुर मिले दिव दृष्ट होई, हे सरवणो मेरे हो साचे सुनने नो पठाए, साचे सुनने नो पठाए, शरीर लाए सुनो सत बाणी, जित सुनी मन तन हरिया हुआ, रसना रस समाणी, साचे लख वडाणी ताकी गात कही ना जाए। कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र होवो, साचे सुनने नो पठाए, हर जियो गुफा अंदर रख, कह वाजा पवन वजाया, मजाया वाजा पवन नौ दुआरे, प्रगट किए दसवां गुभ तुर खाया, गुरुद्वारे लाए भावनी किना दसवां द्वार दिखाया, तहे अनेक रूप नाव नव निध, तिसदा अंत न जाई पाया। कहे नान कर प्यारे जियो गुफा अंदर रख, कह वाजा पवन वजाया, यो साचा सोहिला साचे घर गावहु, गावहु तां सोहिला घर साचे, जिथे सदा सच त्यावै, सचो त्यावै जा तुद पहावै, गुरमुख जना बुझावे, हो सच सबना का खसमै, जिस बख्शे सो जन पावे। कहे नानक सच सोहेला सचे घर गावे, अणत सुनो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभाया उतरे सगल वसूरे, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सची बाणी, संत साजन भय सरसे पूरे, गुर ते जानी।

जां को ओट तुहारी रहा बिना सिमरन जो जीवन बलना सर्प जैसे अर जारी नव खंडन को राज कुमावे अंत चले गोहारी।

तेरी शरणागति तन लह छड़ाई नानक वे परवाह तिस तिल ना तमाई। राग सोही बाणी श्री कबीर जियो तथा सबना भगता की कबीर के एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अवतर आए कहाँ तुम कीना राम को नाम न कबहू लीना राम न जप हो कवन मत लागे मर जाए बेको क्या करहो अभागे रहाओ दुख सुख करके कुटुंब जीवाया मरती बार एक सर कर एक सर दुख पाया कंठ गहन तब करन पुकारा कह कबीर आगे ते ना सम मारा सोही कबीर जी।

आए रहाओ काचे करवे रहे ना पानी हंस चलिया काया कमलानी कुआर कन्या जैसे करत सिगारा क्यों रलिया माने पा बाज पतारा काग उड़ावत पूजा पिरानी कह कबीर एह कथा सिरानी सूही कबीर जियो अमल सिरानो लेखा देना आए कठन दूत जम लेना क्या तै खटिया कहाँ गवाया चल चल हो सिताब दीवान बुलाया चल दर हाल दीवान बुलाया हर फरमान दरगह का आया रहाओ करो अरदास गाव किछ बाकी लियो नबेर आज की राती किछ भी खर्च तुम्हारा सारो सुबह निवाज सराय गजारो साध संग जाको हर रंग लागा तन तन सो जन पुरख सुपागा ईत उत जन सदा सोहेले जन पदार्थ जीत अमोले जागत सोया जन्म गवाया माल तन जोरिया पया पराया कहो कबीर तेई नर भूले खसम विसार माटी संग रूले सूही कबीर जियो ललित थाके नैन सरवन सुन थाके थाकी सुंदर काया जरा हाक की सब मत थाकी एक न थाक समाया बावरे तै ज्ञान विचार न पाया बिरथा जन्म गवाया रहाओ तब लग प्राणी तिसै तिसरेव हो जब लग कट मै सासा जे कट जाए ता पौ न जासी हर के चरण निवासा जिसको शब्द वसावे अंतर चूके तिसह प्यासा हुक्मे बूझे चौपड़ खेले जिमन जिन टाल पासा जो जन जान पजह अबगत को ताका किछु कछु न नासा कहो कबीर ते जन कबहु न हारे टाल जो जान है पासा सूही ललित कबीर जियो एक कोट पंच सिकदारा पंच मंगे हाला जिमी नाही मैं किसे की बोई ऐसा देन दुखाला हर के लोगा मोको नीत डसे पटवारी ऊपर पूजा कर मैं गुर पह पकु पुकारिया तिन होलिया उबारी रहाओ नौ डाडी दस मुंसफ तावे रैयत बसन न देही डोरी पूरी मापे नाही बह बिस्टा ला लेही बहत्तर कारिक पुरख समाया उन दिया नाम लिखाई धर्म राय का दफसर सो दिया बाकी रजमना काई संता को मत कोई निंद हो संत राम है एको कहो कबीर सोगुर मैं सोगुर पाया जाका नाम बिबेको राग सूही बाणी श्री रविदास जी।

एकादशी एक दिवसाए समझ गाए फल पावे प्रताप जी ने पखंड राज तत्न बीने निर्मल निराहर केवल सूचे सच ना लागे मल

राखो अपनी शरण प्रभ मोहे कृपा तहारे सेवा कछु न जानो नीच मूर्खारे मान करो तुद ऊपर मेरे प्रीतम प्यारे हम अपराधी सद भूलते तुम बख्शन हारे रहाओ हम अवगुण करह संख नीत तुम निर्गुण दा तारे दासी संगत प्रभु त्याग ए कर्म हमारे तुम देवो सब किछ दया तार हम अकृत कनारे लाग परे तेरे दान स्यो नह चित खस मारे तुस्ते बाहर किछ नहीं पव काटन हारे कहो नानक सारण दयाल गुर लेहो मुग्ध उधारे। बिलावल महला पंजवा। दोष न काहू दीजिए प्रभ अपना त्याइए जित से भी है सुख होए कना मन सोई गाइए कहिए काय प्यारे तुझ बिना तुम दयाल स्वामी सब अवगन हमा रहाओ तुम राख हो त्यों रहा अवर नाही चारा नीतर आतर तेरियां एक नाम अधारा तुम जो तुम करो सोई पहला मन लेता मुक्ता सगल समग्री तेरियां सब तेरी जुगता चरण पखारों कर सेवा जे ठाकुर पावे हो कृपाल दयाल प्रभ नानक गुण गावे। बिलावल महला पांजवा। मेरत हसै सिर ऊपरे पशुआ नहीं बुझे बाद साध अहंकार में मरना नहीं सूझे सतगुर सेव हो अपना काहे फिर हो अपागे देख कसुंबला रंगला काहे भूल लागे रहाओ कर कर पाप दर्ब किया वर्तन कहताई माटी से माटी रली नागा उठ जाई जाकर किए श्रम करे ते बैर बरोधी अंतकाल भज जाहेगे काहे जलह करोदी दे दास रेण सोई होआ जिस मस्तक भाग कर्मा कहो नानक बंधन छुटे सतगुर की सरना। बिलावल महला पांजवा। पिंगल पर्वत पार परे खल जतर बकीता अंदले तिर पवन सूजिया गुर भेट पुनीता मेहमा साधु संग की सुनो मेरे नीता मैल खोई कोट अगहरे निर्मल पै चीता रहाओ ऐसी भगत गोविंद की कीट हस्ती जीता जो जो कीनो अपनो तिस अपैदान दीता सिंह बिलाई हो गयो तृण मेर दिखीता शर्म करते अड दाम को ते गणित नीता कवन उड़ाई कह सको बेअंत गुनीता कर कृपा मोहे नाम देहो नानक दर सरीता। बिलावल महला पंजवा। अहम बुद्ध प्रबाद नीत बोलो बरसना साध लपट कपट गृह बेद्या मिथ्या बिख्याद ऐसी पेखी नेत्र मह पूरे गुर प्रसाद राज मिलक धन जोवना नामे बिन बाद रहाओ रूप तूप सुगंध ता कापर पोगाद मिलत संग पापिस्त तन होए दुर्गाद फिरत फिरत मानुख पया खिन पंगन देहाद एह अवसर ते चुकिया बहजोन परमाद प्रभु कृपा ते गुर मिले हर हर बिस्माद सुख सहज नानक आनंद ताके पूर्ण नाद। बिलावल महला पंजवा। चरण पै संत बोहे था तरे सागर जेत मार्ग पायो ध्यान मैं गुर मह गुर दस पेत हर हर हर हर हर हरे हर हर हर हर हेत उठत बैठ सोबते हर हर हर चेत रहाओ पंच चोर आगे भगे जब साध संगेत पूंजी साबत कणो लाभ ग्रह सोभा सेत निचल आसन मिटी चिंत नाही डोलेत परम पलावा मिट गया प्रपेक्त नेत गुण गंभीर गुण नायका गुण कहियत केत नानक पाया साध संग हर हर अमृत। बिलावल महला पंजवा। बिन साधु जो जीवना ते तो बिर थारी मिलत संग सा प्रभ मिटे गत पई हमारी जा दिन पेटे साध मोहे उआ दिन बलहारी तन मन अपनो जियरा फिर हो वारी रहाओ इत छड़ाई मोहे ते इतनी दृढ़तारी सगल रेन एह मन पया बिनसी अप तारी निंद चिंद प्रभ दुख न एह खिन मह जारी दया मया अर निकट पेख नाही दुवारी मन तन शीतल पाया संसारी जीत जीत सा प्रांता

पहे बेनती, मेरी पैज रखू अरदास जियो, पैज राखू अर जने केरी अर देहु नाम निरंजनो। अंत चल दया हुए बेली जमदूत काल ने खंजन, सतगुरु की बेनती पाई हर प्रभ सुनी अरदास जियो, हर धार कृपा सतगुर मिलाया धन धन कहे सवास जियो। मेरे सिख सुनो पुत भाई हो, मेरे हर भाणा हो मैं पास जियो, हर भाणा गुर पाया मेरा हर प्रभ करे सवास जियो। भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभ भाणा पहावे, आनंद अनहद वजे वाजे हर आप गल मिलावे। तुसी पुत

केसो गोपाल पंडित सदेव हर हर कथा पढ़े पुराण जीव हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए बेबान हर रंग गुर पावे पिंड पतल किरिया दीवा फुल हर सर पावे हर पाया सतगुर बोले यार मिलिया पुरख सुजान जियो रामदास सोडी तिलक दिया गुर शब्द सच निशान जियो सतगुर पुरख जे बोलिया गुर सिखा मन लई रुजाए जियो मोहरी पुत सनमुख होया।

0: 아주? 아, 갑자기 맥을 드니?
1: 그를, 야, 그를, 야, 그를.
0: काम क्रोध मदमान मोह बिन से अंदर कहते ये भी पंजे दूत जड़े ये खत्म हो जाएंगे काम क्रोध और लोभ मोह बिन से जाए अहमेव नानक प्रभ शरणागत मन वैगुरु की शरण चल जाता जुड़ जाता वैगुरु के नाल आनंद मंगल रस राम रंग आनंद मगन रस राम रंग नानक शरण आगे शरण च चल जाता वाहगुरु जी ताती वाओ ना लगे पार ब्रह्म शरणाई चौगिर्द हमारे राम कार दुख लगे रखो सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन हुण गुरमुखां ने बच्चों ने कीर्तन करना जिन्हें सिमर करना उपर स्कूल वाले कमरे च आ जाओ जी इन्ने विचार करते हैं भुला हो जाए गुरु ते संगत बख्शन जो बख्श लेना जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।